0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: लिखो तीन मिया करता बेटा फिर चंडांग दिमाग तब तनाना इजो जो हम जोपतन जो मैं इनफे वो फोए साजी दिलंग सुन कोई जिम्नास मैंने अंदर जो लगा मैं साइक नहीं जीवो आशा इस दिन पहचान मूलम सोरो चकर से जो मिया करता बेरान पने फो तलूले उलटी जाने रंजन माये रकुरंजान काजमांग मूड ओम जिम्नाजो ने फिर जान फो मैं इनफे फे वो ते तुम तनाना वे साजी दिलंग सुन तीन मिसो वे तमने पहचान जिम्नाजो विस्तार जीरना सुनो ना दे बेरान दायरा रंग वाले नूल हुआ तो मुरंदाला नहीं ना दिफा पीना फप्ता दें ना वो इम्ता चंग जे मलाला दाला क्या ने लाला न्यूज़ वाले ते नहीं तम्य बोलोनी जिंजा आनं सानिशेरान ने फान बुतुच्चे ने करान नंबरन चंग उनो द तान प्रेतानी फुक्तान पंगा जबा जबा तान
2: Tupchane zambana nuchayale neva le tutufane tutsan nyakatsayale le ranfasaro tena manambotsa le lalan de neva ne voav nyora de tutsale savatsana tondrareo neva ni zeva mandan volan panambavana ni lalana kely io tena neva miakatsa besy de atsa tiambalana raha se fokely moa zany de eto aminay mihitsy neva tena ranfe de mokolakany aty aminay anakiray de fandimbiasana be mihitsy neva le olona makapiaratra de metsena de miasa tsany fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na tafo na varavarana de miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nanao alahany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese roanjato ny taetako izao zao hoe mba hoe kafana ny lalanjany fa mijaly izay aty ambany tanàna izay fotsiny izany ny taetako
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.